संगम ना सा बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं, अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं।

मेले में अकेले फिरी बाजार घर में, कौन सा बनाना बहाना बहाना बहाना, मैं जमला पगला दीवाना।

लगाती ना, छोटी सी उम्र में वो जान तो लगाती ना, प्रेम का रोग पुराना पुराना पुराना है। जमला पगला दीवाना।

लबा के हाथ से ले आवा तुहारी सोच के पढ़ू पाऊंगा ते खरिया खरिया सुनाऊंगा।

प्रभात रेडियो फ्रैंकफर्ट इज वन एंड ओनली वन पंजाबी रेडियो स्टेशन इन जर्मनी। ऑफ कोर्स प्रभात रेडियो इज बेस्ट फॉर योर ओन रेडियो स्टेशन। Expose yourself, God, you see, this wonderful world, lovely, sweet or funny world, with your own watching eyes and experience.

वारिवा, वंडरफुल सॉन्ग, क्या बातें ने, किड्डी सोहनी आवाज, किन्नी प्यारी आवाज मैडम नसीबो लाल जी, लाल जी दी। गल इस तरह के जो मैं फील करदा वो ये कि लता जी हुनी, मलका इतरंदम नूरजहां जी, आशा उषा ते जिन्ने भी मतलब की है टॉप दिया सिंगर होईयां ने, नसीबो लाल उन्हां दे टक्कर दी सिंगर सिंगर है, पर गलत हत्थां दे विच आ जान करके ते अनपढ़ होण करके बेचारी थोड़ी जेडे हुंदे ने ना बैकवर्ड लोग जेडे पढ़े पढ़िया इलाका नहीं हुंदा, पर एदे आर्ट विच एदी आवाज जेडी है ओ टक्कर वड्डिया वड्डिया ओलंपिक दियां जेडियां प्लेयर रहियां ने साडे, जिन्हां दे मैं नां लए ने, जिन्हां ने दिल ते राज कीता है, बिल्कुल नसीबो लाल उन्हां दे टक्कर दी आर्टिस्ट है। सो सजनों, मैं ना तुहानू अपनी एक रचना सुनाउणा, ओदे बाद मैं तुहाडे वल आ रहा, ते तुसी रेडी हो जाओ, ते मैं टर्न बाई तुहाडे वल आवांगा सारिआं वाली, क्योंकि अज प्रोग्राम ही तुहाडा। अर्ज इस तरह सजनों के गुस्सा माड़े ते ही क्यों आउंदा है गुस्सा माड़े ते ही क्यों आउंदा है ते गरीब क्यों अकल तो दूर हुंदा है, अकल क्यों थां थां झुकदी है, हर मूर्ख नूं क्यों गुरूर हुंदा है, अकल क्यों थां थां झुकदी है, हर मूर्ख नूं क्यों गुरूर हुंदा है, ते तरक्की क्यों पैर हैवाना दे चुमदी है, शरीफ क्यों इज्जत तो दूर हुंदा है, एक गलती क्यों औरत लई मौत हुंदी, एक गलती क्यों औरत लई मौत हुंदी, ओए बंदा क्यों गुनाह तो दूर हुंदा है, औरत औरत दी क्यों शरीक हुंदी, औरत औरत दी क्यों शरीक हुंदी, झगड़ा नू सस दा क्यों मशहूर हुंदा, सौरा भी तो उसे घर च ही हुंदा, बहुत घट वेख्या होगा सौरा नू ना लड़दा होवे, नहीं, औरत औरत दी क्यों शरीक हुंदी, झगड़ा नू सस दा क्यों मशहूर हुंदा, वड्डा रुतबा क्यों मुंडे वाले रखदे ने,

दुनिया के मेहरबान दोस्तों, ते परवाज रेडियो फ्रैंकफर्ट के खूबसूरत श्रोतियों, ए मोहब्बत दा पैगाम देने वाला दोस्ती अते भ्रातरी भाव दियां खुशबुआं खिलारदा, वाह वाह। आप सब दी जिंदगी दे खेड़ियां च वाधा करदा,

मिठे बोलन आप दे दिलां ते राज करन वाला ए है जी प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट। जी हां, प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट इज वन एंड ओनली वन पंजाबी रेडियो स्टेशन इन जर्मनी। ऑफ कोर्स प्रवास रेडियो बिल्कुल जी तुहाडा अपना रेडियो स्टेशन, योर ओन रेडियो स्टेशन। एक्सपोज योरसेल्फ, हाउ डू यू सी दिस वंडरफुल वर्ल्ड, लवली और फनी वर्ल्ड विद योर ओन एक्सपीरियंस एंड वॉचिंग आई। वी आर ओनली फोन कॉल अवे। बिल्कुल दोस्तों, असी तुहाडे तो सिर्फ फोन कॉल अवे ही हां। वी रिस्पेक्ट यू एंड योर व्यूज, दैट्स द ब्यूटी ऑफ योर लवली रेडियो स्टेशन। दोस्तों आज है जी, कल ते सी असी अपने दिल की गलबात की, असी की सोचते हैं, ते अज तुसी आ जाओ, तुसी की सोचते हो, तुहाडा इंतजार है सानू। ते गल इस तरह भाई, तुसी मैनू एक माड़ी जी मिस कॉल मारनी है, मैं टर्न बाय टर्न हाजिर हो जावांगा जी खुद ही तुहाडे कोल। ते शायरो शायरी का प्रोग्राम है अज, जेड़े सज्जन राइटर नहीं शायर नहीं कोई गल नहीं, वेलकम सारिया का। वह आण के अपने आले दुआले की जा कोई अपने समाज की गल की जी, धरती तो लैके चन्न तारिया तक कोई भी तुसी गलबात कर सकते हो। ठीक है जी, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत करांगे असी, सानू खुशी होएगी। जां तुसी इहो ही दसो तुसी सानू कित्थे सुन रहे हो, आण के सत श्री अकाल ते इंजॉय करदे हो, साडे नाल फतेह फतुई भी सांझी करिया करो, कदी कदी मैसेज बहुत सोहणे भेजदे हो तुसी, थैंक यू वेरी मच। पर असी चाहुंदे आ तुसी आण के साडे नाल भावें दो तीन मिनट की गल करो, करो जरूर। दैट्स द ब्यूटी ऑफ योर लवली रेडियो स्टेशन, टू लिसन अस वर्ल्ड वाइड लॉग ऑन www.pravasradio.com। बिल्कुल जी, प्रवास रेडियो इज अ वन वर्ड एंड ऑल आर स्मॉल वर्ड, www.pravasradio.com। ते साडा लोगो है जी येलो रंग दे दो स्पीकर, क्योंकि बहुत सारे रेडियो स्टेशन इन्हां दे नाल मिलदे जुलदे नावां वाले अपीयर हो जाणगे, पर तुसी साडा लोगो वेख के जां इस तरह करो सानू टेलीफोन करो, असी अपना लोगो तुहानू भेज देंगे नाल ही ऐप, मेहरबानी होगी। ते अपने पंजां सत्तां दसां मित्रां नूं भी साडी ऐप डाउनलोड करवाओ, थैंक यू वेरी मच। ते मैं हां जी आपदा होस्ट ते दोस्त सुच्चा सिंह बाजवा, स्वीकार करो जी मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल, अस्सलाम अलैकुम, नमस्कार एंड अ वेरी वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल द लवली एंड स्वीट पीपल ऑफ दिस प्लैनेट। दोस्तों साडे ते वैसे दोपहर है, पर किते इवनिंग है, किते मॉर्निंग है, किते नाइट है, ते मैं फिर एको ही एक लफ्ज बोल रहा हुंदा। सो वेरी गुड इवनिंग ऑल द लवली एंड स्वीट पीपल ऑफ दिस प्लैनेट। लठ मार सब लीडर बन दे नावां वाले अपीयर हो जाएंगे, पर तुसी साडा लोगो वेख के जां इस तरह करो सानू टेलीफोन करो, असी अपना लोगो तुहानू भेज देंगे नाल ही ऐप, मेहरबानी होगी। ते अपने पंजां सत्तां दसां मित्रां नूं भी साडी ऐप डाउनलोड करवाओ, थैंक यू वेरी मच। ते मैं हां जी आपदा होस्ट ते दोस्त सुच्चा सिंह बाजवा, स्वीकार करो जी मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल, अस्सलाम अलैकुम, नमस्कार
and a very, very, very good evening. All the lovely and sweet people of this planet. Dosto, saade te vaise dupahar hai, par kite evening hai, kite morning hai, kite night hai, te main phir koi ek lafz bol raha hunda. So, very good evening, all the lovely and sweet people of this planet. ਲੱਠ ਮਾਰ ਸਭ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਏ ਅਕਲ ਕੁਰਸੀਆਂ ਡਾਉਂਦੀ ਜੇ

मेहरबान दोस्तों, ते परवाज रेडियो फ्रैंकफर्ट दे खूब सुरत सुरोते ए मोहब्बत दा पैगाम देने वाला दोस्ती अते प्रात्री पाव दिया खुशबुआ खिलार दा वाह वाह।